0: जितना भी आप उसको ऊंचा ले जाएं फिर भी महदूद है
1: जी,
0: बहुत ही छोटा है निस्बतन उससे जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जो हमसे कहा गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो डिप्रेशन ये चीज़ें हैं, हर कोई अगर ज़िंदगी का मकसद छोटा हो और उसको ज़िंदगी भी वही उसी टाइप की फिर डालनी पड़ती है, उसमें ना जाज़बियत है ना कुछ, वो छोटे से एक चीज़ पे अगर वो फेल हो जाए तो वो एकदम ज़िंदगी का खात्मा करता है या डिप्रेशन में चला जाता है। दीन की खूबी यही है, दीन मकासिद को बहुत बुलंद करता है कि इंसान जितनी भी कोशिश करे वो ऊपर ही चढ़ता जाता है। तो उसको अपनी ज़िंदगी का वैल्यू भी पता चलता है और जिसके लिए वो ज़िंदगी गुजारता है, जिस मकसद को हासिल करने के लिए वो ये सरमाया गुजारी करता है, तो उसे लगता है इट वर्थ्स, मैं अगर ये अपनी ज़िंदगी जो है खर्च कर रहा हूँ एक बड़े मकसद के लिए तो इसकी कीमत मुझे मिलेगी। तो वो थकता कभी नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास उम्मीद ही है हमेशा। तो जो आजकल जो हो रहा है ये वही है, एक छोटी सी दुनिया, इसमें बस ये डॉक्टर इंजीनियर ये शायद वो पैसा वो मकाम, और जब वो नहीं मिलता तो ख़त्म। लेकिन अब मुबल्लिग का है, ये मुबल्लिग की जिम्मेदारी है कि वो दीन को इस तरीके, यानी मैं जो इसमें अगर मैं एक जुमले में कहूँ, मारिफत दीन की कमी है। अमल दीन पे हो रहा है लेकिन मारिफत के बगैर मज़ा उसमें नहीं है, लज्जत नहीं है, ड्यूटी है, एक कंपल्शन है। नहीं जी, आपको नमाज टाइम हो गया, आपको नमाज पढ़नी है, तो एक जवान सोचता है ठीक है यार अगर ना पढ़ूँ तो क्या होगा, वो मैंने उसको मारिफत ही नहीं दी है। मैं हदीसें बहुत ऊंची कहता हूँ, सलाह तो मेराजुल मोमिन वो, लेकिन वो अगर मुझसे सवाल करेगा तो मैंने कोई मेराज देखी नहीं, कैसी मेराज होगी। तो वो चूंकि माहौल ऐसा है, हमारे जवान पढ़े लिखे हैं, मुख्तलिफ मकतबाई फ़िक्र से उनकी आशनाई है और हर एक मकतब फ़िक्र जो है वो उनको अपनी तरफ दावत दे रहा है, मेरे पास क्या है। तो वो एक चीज़ है, वो मारिफत की कमी है जिस पे मुझे लगता है हमें बहुत काम करना है।
1: सही। तो अगर एक जवान को हम अगर स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ एक गाइड करना चाहते हैं तो आज की प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर जहाँ पर उनको जॉब भी करना है, करियर भी कर लेना है, पढ़ना भी है, स्टडीज़ भी है, या मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो ऐसे हालात में स्पिरिचुअल अगर वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है तो हम दीन की तरफ से उसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होगा उसके लिए?
0: पहला ये चीज़ है, हमें ये देखना है कि क्या दीन ने स्पिरिचुअल कुछ अलग बनाया है दुनिया से, कि नहीं आपको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें जाने के लिए आपको दुनिया से टक्कर लेनी है ना। जैसे हम अपने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की दास्तानें पढ़ती हैं, अहादीस में वारिद है, जैसे हम अइमे अथहार अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ते हैं, तो वो इसी दुनिया में यही ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी ज़िंदगी में वो स्पिरिचुअलिटी भी आती है। मसला ये है कि क्या आप इस दुनिया और स्पिरिचुअलिटी को दो अलग अलग चीज़ें बना के पेश कर रहे हैं, कि आप उसे कह रहे हैं कि देखिए बावजूद इसके कि आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप इस दुनिया में हैं, आप मैरिड लाइफ में हैं, आप पता नहीं किस किस में, लेकिन आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो शायद उसको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, कभी वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कभी उसको नहीं। हमारे हदीसों में है कि आपका बेडरूम भी मस्जिद बन सकता है, आपका दफ्तर भी मस्जिद बन सकता है, आपका जो है ज़मीन जहाँ पे आप ज़मींदारी कर रहे हो वो भी, आप हर एक जगह को मस्जिद और इबादतगाह बना सकते हैं।
1: आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दे जवान को कैसे।
0: हाँ, ये चीज़ है। देखें, दीन आया किस लिए, हमें हिदायत करने के लिए। हिदायत किस की तरफ है, कोई मकसद हमें, एक मकसद है, एक वसाइल है, ठीक है। जब हम एक जवान को ये कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसे पहले इस तरीके से ठीक है समझाएंगे, उस मकसद तक पहुंचने के लिए वसीला क्या है, यही आपका काम है, यही आपकी पढ़ाई है, यही आपकी ज़िंदगी है, यही रोज़मर्रा जो आप कर रहे हैं यही है, लेकिन उस मकसद के उस क्या कहेंगे उस रास्ते में आना चाहिए, उसे नहीं हटना चाहिए, जिसे हम अपने लैंग्वेज में नियत कहते हैं, आपको उसी इस्तेमरार में रहना है। आप आए हो यहाँ खलीफतुल्लाह है, आप मामूली आदमी नहीं हो, आपको बहुत बड़ा काम करना है। जब उसके जहन में आया तो फिर वो कहेगा आप कैसे कर रहे हैं मुझे, आप यही काम करो जो आप दफ्तर में करो, लेकिन ईमानदारी से करो। इंसानियत जो आज एक चीज़ दरज़मन में अर्ज़ करूँ, जो आजकल बड़ा वो इंटेलेक्चुअल्स और एक डिस्कोर्स ही बना हुआ है वो, कि ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन। मैं हमेशा हर एक सौ कहना, यानी ह्यूमैनिटी समझाएगा कौन, मेरी ह्यूमैनिटी एक है, आपकी ह्यूमैनिटी एक।
1: सही बात।
0: आप दसों से आप सवाल पूछें, ह्यूमैनिटी के 10 डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे। ह्यूमैनिटी को
1: उनके लिए लिबास उतार देने में ह्यूमैनिटी है, हमारे लिए लिबास पहनने में।
0: ठीक, मैं कहता हूँ आप ह्यूमैनिटी, आपके पास घड़ी है, तो ये घड़ी क्या है, मैं एक तारीफ करूंगा, आप एक तारीफ करेंगे। घड़ी बनाने वाले से पूछे घड़ी क्या है, तो अगर अल्लाह ने मुझे बनाया, अगर आपके भगवान ने आपको बनाया, आपके परमेश्वर है जिसने भी, जाके उससे पूछो ना बनाया क्या है, तो आप इंसान हो, इंसानियत क्या है। हम जब दीन के तनाजुर में देखते हैं तो हमें खलीफतुल्लाह बनाया गया है, खिलाफत, सयादत, इस दुनिया की कयादत, इस दुनिया पे हमें हुक्मरानी करनी, सल्तनत दुनिया की हमारे हाथ में, ठीक है। अब मुझे इस मकाम पे पहुंचना भी है और ये मकाम रिटेन भी करना है, उसके लिए नुस्खे क्या हैं जो आपकी जिंदगी वो, लेकिन उस तनाजुर में आप वो जिंदगी गुजारें, और आपके सामने ओपन बुक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको उस मकसद तक, जो आपका रास्ता है वो डिरेल कर सकते हैं, उसको छोड़ना है, जो चीज़ें उसके मुताबिक है उस पर आपको फॉलो करना है, फिर आप उसको दीनी लैंग्वेज में वो कहें, बनाया किसने है, किसको बनाया, एक तो ऊपर अल्लाह है, नीचे इंसान है, तीसरा तो कोई है ही नहीं, तो इतना आप उसके नज़दीक हो तो आप अपनी ड्यूटी निभाए बहसित खलीफा, तो वो आपको देख रहा है। अगर आप आसान जबान में इसको बोलें तो मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि मैं गुनाह करता हूँ, क्यों करता हूँ, आप मुझे एक तरीके से, आपने गुनाह का आप जहन्नम में जाएंगे, आपने ये किया आप जहन्नम में जाएंगे, मेरे लिए तो जन्नत कहीं है ही नहीं, ये दुनिया तो पूरी खराब ही पड़ी हुई ना। तो अगर मैं आज दुनिया का माहौल देखूं, मैं कहीं पे पढ़ रहा हूं, कोएड में पढ़ रहा हूं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे महरम ना महरम तो
1: जी।
0: अब मुझे मौली साहब कहेंगे नहीं जी आपने ना महरम का जो है चेहरा देखा है लिजा आप जहन्नम में जाएंगे, तो जन्नत तो है ही नहीं कहीं, ठीक है। दफ्तर में जाऊँगा वहाँ पर एक दूसरा माहौल है, बाहर जाऊँगा वो, तो आप इस चीज़ को थोड़ा साइडलाइन करके उसको आप उस खुदा का चेहरा दिखाए जिसने आपको खिलाफत का ओहदा दिया है, ठीक है, वो दिखा के उसको अपनी कदर और अपनी शान और मंजिलत बताए तुम क्या हो। जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वो हदीस है कि किसी ने उनसे सवाल किया कि अपने रसूलल्लाह आप गुनाह क्यों नहीं करते, कर सकते हैं, तो उन्होंने फरमाया कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, तो क्यों नहीं करते, तो फिर उन्होंने गंदी नाली के सामने उन्होंने कहा कि ये क्या है, पानी है, पी सकते हो, कहा नहीं पी सकता, क्यों नहीं पी सकते, मुझे पता है गंदा है, मुझे हमें भी पता है गुनाह करना क्या है, जब मुझे अपनी कदर मालूम होती है तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को उसी तरीके से चेंज करता हूँ। हमें पहले इंसान को ये बताना है कि तुम क्या हो, जब हम उसमें कामयाब हो गए ना तो वो सारा जो है सिस्टम ठीक होगा। अब अगर आप उसको उसी चक्कर में फंसाओगे कि नहीं जी, यानी अभी हमारे जवानों के पास खुदा का एक कॉन्सेप्ट है कि ये बस कोड़े लेके हमारे पीछे ही पड़ा हो और कुछ नहीं, दर हाल क्या रहम और रहमीन है, जवानों के लिए मुश्ताक है, लेकिन हाँ वसाइल आप ऐसे पेश करें कि उनके लिए वो बोरियत का सामान ना बने। जैसे अभी जो ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी क्या है, आप किसी बंदे को मजबूर है
1: उसकी हेल्प कर,
0: उसकी हेल्प करें, यही तो दीन ही कहता है। अब दीन को छोड़ के आप कोई पता नहीं कहाँ से ले जाए, फिर कहते हैं दीन में ये नहीं ना, दीन में वो, दीन में ही है। ज़कात का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, सदके का कॉन्सेप्ट है कि अभी एक नीडफुल बंदा है, एक कोई जमात है, उसके लिए आप सही करें, इंसानियत यही सिखाती है, तो दीन तो एक बेहतरीन तरीके से ये सिखाता है। अब हमें नहीं पता, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता कि ये इतना कॉमन सेंस अगर हम इसमें अप्लाई करें और दीन को इतने आसान तरीके से बताएं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर इतना सवाल। हाँ, इल्मी बहस वो दूसरी बात है, लेकिन जो अभी माहौल बना हुआ है उस तरीके से मैं समझता हूँ।
1: तो एक जवान है, अगर वो स्टडीज़ कर रहा है, ठीक है, और उसका मकसद इस स्टडी में ये है कि इस स्टडीज़ के ज़रिए से वो एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो नेक हो, खिदमत गुज़ार हो, और जैसा आपने कहा खलीफतुल्लाह, यानी उसके कंधे पे जिम्मेदारी है कौम के, गरीबों के, मजलूमों की, कायनात की। अगर वो इसलिए इल्म को हासिल कर रहा है, चाहे वो ग्रेजुएशन में है, चाहे वो मास्टर्स कर रहा है, यही पढ़ाई उसके लिए स्पिरिचुअलिटी है ना। तो ये हमारे लिए इसी तरीके से हस्बैंड है, अगर वो घर बाहर जाके मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, रिज्क हलाल तलाश कर रहा है, तो हदीस है जी, हदीस वाजह है कि मसलन उस सबसे बड़ी इबादत जो 70 शाखें, उसमें से बेहतरीन शाख जो इबादत इसकी है रिज़्क, तो वो इसी तरीके से शौहर, इसी तरीके से बीवी अगर घर में अपने बच्चों की तरबियत कर रही है, तो जैसा कि आपने कहा उसी बात को मैं समराइज करके खाली ऐड कर, तो ये आप अपने जोन में अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ड्यूटीज़ आपको कैसी होनी चाहिए वो खुदा ने बाउंड्रीज बना दी ना, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगी ना। वगरना औरत कहेगी कि मेरे साथ, फेमिनिज्म की नज़रिए से औरत सोचेगी, मर्द जो है वो पैट्रियार्कियल सोचेगा कि मैं बड़ा हूँ, औरत सोचेगी मैं बड़ी हूँ। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम दोनों बड़े नहीं हो, अल्लाह बड़ा है, تم دونوں جو ہیں اکول ہو, اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ جو جوانوں کو پیش کرنے, وہ یہ کہ بھائی

0: रिलीजन जो है वो तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी जीना है, लेकिन डिवाइन लॉज के मुताबिक जीना है। तो ये खूबसूरत सा एक तरीका है जिसके अंदर आप जो हैं, मिसाल के तौर पर कितना खूबसूरत है कि एक बीवी और एक शोहर के लिए दीन ने कहा है कि भाई आप एक सुफरे पे बैठो, एक दूसरे को मुस्कुरा के देखो,
1: तो दूसरे के मुंह में निवाला रखो
0: रखो। ये अगर ये करते हो तो इसका सवाब ऐसा है जैसे कि आपने उम्रे का सवाब किया हो। तो ये दीन हमारा जो है ये जवान के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है।
1: एग्जैक्टली, ये अट्रैक्टिव लफ्ज बहुत है
0: जी। तो अभी हम लोग यहाँ पर, अच्छा यहीं पर जो आज के जवान हैं उनके लिए बैरियर्स भी हैं। एक बार उसे समझ में आ गया कि भाई मैं, जैसे मौला कायनात कहते हैं, मेरी वैल्यू है, मैं छोटा इंसान नहीं हूँ। जब हमारे लिए ये क्लियर हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि एक जवान जो है जब वो दीन पे, दीन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, तो जैसा कि आपने कहा कुछ फोर्सेज हैं जो उसको दीन से दूर कर रही हैं, जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके अंदर फाहशा है, बुराई है, कंटेंट ऐसे हैं, और वो लोग जानते हैं कि जवान हैं, जवान हैं तो देखेगा, और जवान के एल्गोरिदम ही इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जवान को वो दिखाया जाए। अब एक जवान एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है यहाँ पर कि उसको वो फोर्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब वो क्या अपने सराउंडिंग में लेयर बनाए ताकि वो उससे मुकाबला कर सके।
1: एक तरीके से इसका जवाब ये है कि एक लफ्ज़ जो कुरान में भी आया है और रिवायात में बहुत इसकी जो है ताकीद की गई है, खुसूसन मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो भी खुतबे हैं, जो अब बनशी हमारी बनी है, और ताकीद भी है कि जब आप खुतबा पढ़ें तो ये ज़रूर कहें इत्तकुल्लाह। मैं एक दफ़ा ये सोच रहा था कि तकवा यानी खुदा बड़ा वो है तो हमें डरना चाहिए, जैसे
0: मामूलन तर्जुमा किया जाता है।
1: फिर अल्लाह ताला का करम था कि मैंने रहबर मौज़म की किताबें कुछ पढ़ी, मैंने तो पढ़ाई भी उसका तद, उसमें उन्होंने वो तकवा का बहुत खूबसूरत
0: मीनिंग,
1: मुझे उस टाइम लगा कि नहीं हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे, मुझे बड़ा डर था इसका। उन्होंने कहा तकवा यानी अपने आप को बचाओ, तो जब अपने आप को बचाओ किससे बचाएं, सवाल तो ये होता ना। फिर मुझे वो मारिफत का चैप्टर कि ये जो है ये नेगेटिव फोर्सेस हैं, ये पॉजिटिव फोर्सेस हैं, ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने उस मकाम तक पहुंचने के लिए रुकावटें बन सकती हैं, और ये है ये जो तुम्हें मदद कर सकती हैं। अब आप तुम मैदान में दोनों फोर्सेस मौजूद हैं, अब क्या करोगे, बचाना है अपने आप को, या वो जो वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पर कोई ऐसी बीमारी हो जो एपिडेमिक हो, हाँ, तो बंदे को चाहे पहला अपना वैक्सीनेशन करे फिर वहाँ पे जाए, तो उससे क्या होता है वो खुद बच जाता है। तो दुनिया की हकीकत यही है जो आपने कही, यहाँ पे इविल फोर्सेस भी हैं, यहाँ पे डिवाइन फोर्सेस भी हैं, दोनों तरीके फोर्स हैं, और इसमें कोई ये नहीं कह सकता नहीं यहाँ पे फकत रहमानियत ही हो और शैतानियत ना, ये बिल्कुल एक,
0: ये तो टेस्ट,
1: बिल्कुल ये
0: टेस्ट के मुखालिफ
1: मैदान है जहाँ पे जो कुरान के मुताबिक और जो बिल्कुल अक्ल के मुताबिक हमें इम्तहान देने हैं, और वला नब्लुवन्नकुम बिशय, मैं किसी भी चीज़ से तुम्हारा इम्तहान जो है वो तो हमें गुजरना है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बहसियत एक इंसान, अगर मुझे अपनी पहचान है तो मैं बहसियत इंसान जो मेरी फितरत मुझे कहती है कि आपको बेहतरीन तरीके से रहना है, तो मुझे वो बेहतरीन तरीके से रहने पे ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जाऊँ या यहाँ पे जाऊँ, मैं इनको अपने साथ मिलाऊँ या इनके उनको अपने साथ मिलाऊँ, तो जितनी भी शिनाख्त बढ़ेगी तो वो लेयर बिल्कुल आएगी, तकवा इन्हें गार्ड आएगा। ठीक है, जब हम फकत तकवा कहते हैं तो मैं अगर आज से 20 साल पहले अगर मुझे कोई तकवा कहता तो मुझे शायद नफरत हो जाती उस बंदे से, मुझे लगता था कोई तकवा ये नहीं, वही वो जो मस्जिद में 24 घंटे बैठेगा और पता नहीं कोई दुनियावी काम नहीं करेगा, फकत इबादत करेगा, तो ये ऐसा बंदा है जो सोसाइटी से बिल्कुल
0: कटा हुआ है,
1: तो ये इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये जन्नत का मालिक बना बैठा है, ये मेरा एक तसव्वुर था। तो लेकिन जब फिर रहबर मौज़म की ये बहुत सारी इनकी किताबों में ये आया है और तकवा, तो मैंने सोचा ये तो ठीक है, लॉजिकल बात है, मैं जा रहा हूँ, गंदगी है, मुझे अपने आप को बचाना है, अब मुझे देखना है कि मैं कैसे बचूँ, कभी मैं साइड ले लूँ, कभी मसलन कुछ करूँ, ये तो मुझे देखना है ना। हाँ, जैसे आपने अभी एक खूबसूरत बात फरमाई कि एक डिवाइन लॉज है, उसमें लिखा है कैसे बचना है कैसे, तो जब मौजूद है तो मैं उन्हीं को फॉलो करूँ। हाँ, इविल फोर्सेस अपना काम करती है, अगर मेरे पास तकवा, अगर मेरे पास शिनाख्त अपनी है, अगर मेरे पास शिनाख्त इन इविल फोर्सेस की होगी, अगर मेरे पास शिनाख्त इन डिवाइन फोर्सेस की होगी, तो अगर मुझे मकसद का ये हुआ तो मेरे लेयर آٹومیٹکلی آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. جیسے میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر

0: मैंने मुझे पढ़ना है 5-8 घंटे मुझे कंटिन्यूअसली पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए अगर मैं यहाँ बैठा तो यहाँ पे ट्रैफिक है, ये शोर आएगा, मुझे थोड़ा इसमें हवास बाखता हो जाऊँगा। घर में बैठूँ तो वहाँ घर का काम होगा, तो मैं किताब उठा के किसी लाइब्रेरी में जाता हूँ, तो ये लाइब्रेरी मेरी लेयर बन जाती है उन चीज़ों से जिनसे मैं नहीं होना चाहता।
1: डेविएशन
0: ये कोई नहीं है, मेरी अक्ल मुझे कहती है ऐसा। तो जो अक्ल का जो ना वो क्या कहते हैं इसे, जो सही इस्तेमाल करना दीन जो हमें सिखाता वो यही है। अगर आप जवान पे मारिफत के लिहाज से अमल करें और उसको अपनी मंजिलत और कदर पहचाने तो फिर उसको आप कहें कि ठीक है जी अब क्या करोगे, यहाँ पे तो सब कुछ गंदा है, अब क्या, वो खुद ब खुद कहेगा कि मुझे क्या करना है।
1: सही बात है। एक बहुत अच्छी मिसाल कराती ने दी थी, वो मैं चाहता हूँ हम शेयर करूँ व्यूअर्स के साथ, आप भी उसकी इसलाह फरमाइएगा। वो कहते हैं तकवा की मिसाल जूते की तरह है। जूते का काम क्या होता है, आप जब पैर में पहनते हैं जूता तो जूता क्या करता है, गर्म ज़मीन से आपकी हिफाजत करता है। आपके आप चल रहे हैं ठोकर लग गया तो ठोकर लगने से जूता जो है हिफाजत करता है। तो वो कह रहे हैं कि एक जैसे जूता है, जूता आपके पैर में एक लेयर बन गया और आप शौक से पहनते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके पैर को आपको बचाना है, बाहर गर्म में ज़मीन नहीं पैर रख सकता मैं, तो जूता जैसे जूता है वैसे ही तकवा है। इन्हें बहुत ही ऑड मिसाल है लोगों के लिए जूता और तकवा।
0: एक चीज़ है ना, यानी तकवा उसके लिए है जो मैदान अमल में हो। जूता वो पहनेगा जिसे बाहर जाना है, जिसे कमरे में बैठना उसे के जूते को काम करना है। ठीक है, दीन उन पे फोकस करता है जो अमली मैदान में आते हैं। कोई जो बैठे मस्जिद में, कोई जो बैठे हौज़े इल्मिया में, दारुल उलूम में, उनके साथ तो वो तकवा वहीं पे उनका होता ही है। तकवा वो उनके कमरे ही तकवा होते हैं,
1: कन्फाइंड है।
0: हाँ,
1: लेकिन हमारा रिलीजन जो है वो दीन जो है, खुद अहले बैत जो है अपनी जिंदगी जीते थे, नॉर्मल जिंदगी जीते थे,
0: तभी तो तकवा की जरूरत है ना।
1: जी, तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए, जवानों के लिए क्लियर होना चाहिए कि खुद मौलाए कायनात के सिलसिले में है कि जब वो मस्जिद कूफा में गए थे, वहाँ एक शख्स दाढ़ी वाला, आप अगर बयान कर दें,
0: नहीं आप फरमाएं,
1: नहीं, तो वो दाढ़ी वाला एक शख्स बैठा हुआ था मस्जिद कूफा में, तो किसी ने लाके फर्स्ट टाइम उनको बताया कि देखें ये कितनी इबादतें कर रहा है, उसको प्राइड के तौर पर दिखाया गया। मौला अली ने उसकी दाढ़ी निकाल के बाहर फेंका, कहा कि तुझसे बेहतर कूफा के कुत्ते हैं, कूफा के कुत्ते खुद का रिज खुद तलाश करते हैं,
0: तुम यहाँ पे बैठे
1: और तुम यहाँ बैठे हो, कोई तुम्हें दूसरा आके खिलाएगा। तो हमारा दीन में ये रूबानियत जो है कि पहाड़ों पे चले जाओ मना किया गया है। तो व्यूअर्स के लिए, हमारे जवानों के लिए ख़ास तौर पर, आपकी बात को ही मैं ऐड कर रहा था, यानी बात तो आपकी है कि दीन हमारा आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है और इररिस्पॉन्सिबल नहीं बनाता। यानी कि अगर चाहे आपकी मजलिस में मसलन अहले बैत की मोहब्बत को भी इस तरीके से पेश किया जाए कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, आपको इररिस्पॉन्सिबल बना दे, तो ये अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, ये कुछ और है जो आपको दी जा रही है। अच्छा, यहीं पर आगा, आज जो जवानों के लिए चैलेंज है वो एक नामहरम के साथ रहना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर एक चाहे वो जहाँ पर भी रहते हैं, एक दुनिया के अंदर कैसे एक जवान अपने आप को उस एरिया में अपने आप को संभाले,
0: ये कॉमन एक प्रॉब्लम है। एक जवाब वो ट्रेडिशनल है, नहीं जी आपको बचना है जी, नामहरम की नहीं करना है, वो आप नज़र नहीं उठा सकते, वो नहीं कर सकते। तो फिर एक जवान ये सोचेगा तो मुझे फिर पढ़ाई लिखाई काम का, जैसे मसलन अगर हम यहाँ का देखें तो कुछ नहीं करना है, घर पर बैठना है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आया हम कामयाब हुए हैं दीन को एज ए सिस्टम प्रेजेंट करने में, कि हमारा एक दीनदार जवान कॉलेज भी जाए, यूनिवर्सिटी भी जाए, काम भी करे, जो भी हो, और जैसे जिस मुल्क में हो, जिस माहौल में हो, और वो अपना जो वो दीनी तशख़्ुस है वो बहाल रखे। इसके लिए कहीं अगर हमारा ये दावा है कि हमारा दीन जो है वो लाए अमल है ज़िंदगी के लिए, तो उसके लिए तो नुस्खा होगा, ये तो पता ही है, अल्लाह ताला को तो ये मालूम ही है कि ये मेरा बंदा जो मुसलमान है या जिसने मुझे माना है, कल उस मुसीबत में फंसेगा कि जहाँ पे वो बुरके वालियाँ नहीं होंगी या बुरके वालियों के लिए बुरके वाले नहीं होंगे, सब कुछ अयान होगा और यानियत आम होगी, तो क्या इसका दीन जो है वो दांव पे लगेगा, क्या इसका दीन इतना कमज़ोर होगा कि नहीं जी आपको नहीं निकलना। मेरे ख्याल से नहीं, एक तो यही है तकवा, एक तो यही सबसे बड़ा नुस्खा है। दूसरा ये कि हमें जो भी मुबल्लिग हैं, एक हमारा जो है माइंडसेट वो है कि हम जी बस मुसलमान हैं और जो भी इस्लाम ने कहा है पर्दे के बाद

0: स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो एक बहुत चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक मैंने एक बार पढ़ रहा था, 97% यूके में बिटवीन 16 एंड 24 ईयर्स की लड़कियां कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में कम से कम एक बार हम लोगों को सेक्सुअली हरेस किया गया, 97%। तो यानी आपने जब कहा कि भाई हमारे यहाँ मॉडल तो परफेक्ट है और बस लड़कियां जो भी पहनेंगी लड़के, हुआ तो नहीं
1: हुआ
0: वो जो आपने कहा एग्जैक्टली जो खुदा ने कहा है कि मरज़ है इंसान के दिल में, वो तो बाकी रहता है, वो तो ख़त्म नहीं होता। बस अगर बस इस मॉडल में जहां पर एक लड़की काम पे, ये लड़की कॉलेज जा रही है, लड़का भी कॉलेज जा रहा है और वो उसको पता हो उसकी बाउंड्रीज यानी हिजाब यानी वो बाउंड्रीज उसको पता हो कि भाई एक लड़की से मैं बात कर सकता हूँ, कितनी बात कर
1: सकता हूँ, किस हद तक बात कर
0: जी
1: बिल्कुल
0: यानी उसकी बाउंड्री है कि भाई आप काम से रिलेटेड बात कर सकते हैं, पर्सनल बात नहीं कर सकते, है ना। पर्सनल अगर बात कर रहे हो, तुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, उससे इंसान के अंदर अट्रैक्शन पैदा होता है। इस्लाम कहता है नहीं, यहाँ पर आपको जो है आप कलीग्स बन सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं बन सकते,
1: फ्रेंड्स नहीं बन सकते।
0: तो ये इस्लाम एक बाउंड्री देता है और उसका जैसे आपने कहा वो वैक्सीनेशन है,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, यानी कि वो एक आपको वैक्सीनेट करता है कि भाई क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप लोगे तो आप सेकेंड स्टेप पे नहीं रुक सकते,
1: बिल्कुल
0: आपको पहले स्टेप पे ही रुकना है ताकि आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें।
1: ज़मीन में आपसे ये एक चीज़ का मैं एतराफ़ करूँ, बहसियत मैं भी एक मुबल्लिग हूँ, गाँच की इतनी हैसियत नहीं है मुझे अपने मुबल्लिग कहने की, लेकिन हमारे दीन में जो एक रविश कुरान की है कि अगर वो कोई नज़रिया देता है फिर उसका रोल मॉडल पेश करता है, ये है औरतों में जैसे मरियम अलैहिस्सलाम, आसिया अलैहिस्सलाम, वैसे ही हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक वो जो किताबों में हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा के जो एक बहुत ही फ़ाल एलिमेंट अपनी सोसाइटी की, जंग में भी हुज़ूर के साथ और पैरामेडिकल स्टाफ अपने इसके तहत और बहुत बड़े पॉलिटिकल सोशल डिस्कशंस में डिबेट्स में हिस्सा लेना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करना, बहुत सारे मसाइलों पे बहस गुफ्तगू करना, ये एक फ़ातिमा ज़हरा जिसका नतीजा फिर खुतबा फदक हुई थी, एक फ़ातिमा ज़हरा सलाम जो हमने पेश की, जो घर के पिछले कोने में नमाज पढ़ती है, जो कभी बाहर नहीं निकलती। तो जब अब हमारी बच्चियां हैं जैसे फितरतन मैंने कहा मुसलमान हैं, फितरतन दीन की तरफ रागिब हैं, अब वो चाहती हैं हम भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तरह बने, तो एक किताबें तो वो पढ़ती नहीं, उनके पास पता ही नहीं किताबों में क्या लिखा है। अब जो मैंने मिंबर पे कहा कि नहीं जी वो बड़ी चादर और वो किसी से बात नहीं करती थी, तो वो अनु एनालाइज करती हैं कि ठीक है अगर ये फ़ातिमा से ठीक है ये मुकद्दस शख्सियत है, इसका एहतराम वाजिब है, सब कुछ ठीक, और इसकी शफात के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे कॉलेज में, मेरे दफ्तर में, मेरे स्टी में, मेरे फ्रेंड सर्कल में फ़ातिमा ज़हरा का कहीं कोई दखल नहीं हो सकता, कोई रोल मॉडल मेरे लिए बन नहीं सकती, क्योंकि ये घर में बैठी थी, ये कुछ घर में काम करती थी और कुछ नहीं करती थी। तो अब इसको क्या दें हम, यानी एक एक शख्सियत है तारीख में जो मुजस्समे इस्लाम है अगर हम औरतों के अहकामात की बात करें, और मुजस्सम जो है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह की शख्सियत है। यहाँ मेरी बेटी चाहती है कि मैं भी इस मॉडर्न एरा में एक दीनदार औरत की तरह रहूं, लेकिन उसके लिए कोई रोल मॉडल नहीं। अब एक थी, मैंने उसको ऐसे पेश किया कि वो कहती नहीं बाबा ये आज के ज़माने की नहीं हो सकती। अब ठीक है ये हमारी एक मुकद्दस शख्सियत है, इसके शहादत पे, इसकी विलादत पे हम अपना वो खराज अकीदत पेश करें और इसके गम में रोए ताकि हमें कल शफात करेगी। दुनिया में कहाँ है, ज़िंदगी में कहाँ कहीं है,
0: यानी रोल मॉडलिंग हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हम लोग नहीं कर
1: नहीं
0: पाए, यानी नहीं प्रेजेंट कर पाए।
1: हमारे अइमे अथहार खुद अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहसत एक खानदार बहसत एक वो अनसर जो यानी वाकअन अगर अली अलैहिस्सलाम सोसाइटी में ना हो तो एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो जाता है। तो शायद बहसत मुबल्लिग मुझे अपने जवानों को ये कहना नहीं आया कि वो अट्रैक्ट होते इनकी ज़िंदगियों की तरफ पढ़ते, बहुत सारे हैं, मैं नहीं कहूँगा टोटली हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम जनरल में देखें नहीं हम जो भी मुबल्लिग जिस सतह का भी हो वो इस तरीके से, चूंकि उसे ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आजकल हो रहा है, हमारा सोशल जो फैब्रिक बन रहा है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमें इस तरीके से हम फ़कत शहादतों और विलादतों से उसका कोई जवाब नहीं दे सकते जब तक कि हमारे मेंबरों में ये चीज़ें बयान ना हो।

0: एक तो ये है कि नहीं, ये बंद मेरे ख्याल से वो हो नहीं सकता। एक दफ़ा जब टेलीविज़न आए थे तो वो कह रहे थे नहीं जी इनको नहीं देखना है, नहीं हो नहीं सका ना हो सकता है, तो ये टेलीविज़न इतना बड़ा था अब छः इंच
1: का सही यूज़ करें।
0: एग्जैक्टली वही है, इल्म डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव भी है। क्या इल्म दीन डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता?
1: हो सकता,
0: तो पढ़ना छोड़ दें क्या? हाँ, इसमें यूज़ अच्छे तरीके से करें। तो अब हमारे जवानों के सामने जहाँ पे पोर्नोग्राफी है, जहाँ पे उरियानियत है, तो आप अच्छा कंटेंट, जब आपने कंटेंट क्रिएट किया उसके बाद आप सवाल करें अब क्या करना है। फिलहाल तो कहीं मैदान में है ही नहीं। अब हम अभी कहेंगे अपने जवानों को ठीक है सोशल मीडिया आपको गलत कंटेंट देता हूँ आप ना देखें, ये तो कहेंगे वो कहेंगे ये पागल हो गया है, पता नहीं किस ज़माने से आया, इसको पता ही नहीं क्या है। तो क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से उलमा का काम है, किसी भी मज़हब के हो, किसी भी दीन के हो, उनको मैदान अमल में आके वो कंटेंट क्रिएट करना है या उस कंटेंट की प्रोपगेशन करनी है जो अच्छा खासा हो। फिर आप उस जवान की जिसके आपने तरबियत की उसके सामने दो चीज़ें होंगी, अब ये यहाँ जाए या यहाँ जाए।
1: इस ये भी कंटेंट इस्लामिक कंटेंट या हलाल कंटेंट भी इतना क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए,
0: वो तो चाहिए
1: कि वो
0: आपको मुकाबला करना है। मुकाबला बिल्कुल, मुकाबला बिल मिस वो नहीं हो सकता कि ये 26 की कोई एनिमेशन बना रहा हो और अब तो 1970 की कोई रील बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल इस पे आना चाहिए। और इसमें भी हम ना उम्मीद नहीं है, हमारे जवान हैं इस फील्ड में। हाँ, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है। हाँ, भरमार कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास हैं, लेकिन जब सिस्टमेटिक आप नहीं सोचेंगे तो आपको इन्हीं सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आखिर में आप नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते।
1: सही। तो यहाँ पर हम आते हैं दोबारा, जो आज हमारी सोसाइटी में एक बड़ा प्रॉब्लम है शादी का, मैरिज का, क्योंकि जवान जो हैं बहुत सारे जो हैं वो खुसूसन कश्मीर में जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं वो उसमें ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में शादियां बहुत लेट हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शादियां लेट हो रही हैं कश्मीर में। इसके बारे में आप क्या देखते हैं, क्या सोल्यूशन देखते हैं, जवानों को किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं?
0: मैं फिर वही पाऊँगा, हमारी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर दीन बहसत दीन, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के इस दीन में दाखिल होते हैं, एक एक चीज़ की हमें मारिफत होनी चाहिए। जब हम शादी की बात करते हैं तो हर जगह जब आप निकाह पढ़ते हैं, शादी के बारे में बात करें तो एक हदीस जो है वो हमारी बिल्कुल टिप ऑफ द टंग है, अन्निकाह सुन्नती, ठीक है, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, यानी ओन करने से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के तनाजुर में ओन करने से कतराते हैं, नहीं जी आप हम मुझ में से नहीं हो, मुसलमान की तो बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट मसला है तो फिर है क्या है, किस लिए? आदमी तो आज़ाद है, बेचारा खुला है, क्यों बनना है इसको किसी चीज़ से? और क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर इतनी ताकीद करते हैं, या इतनी हदीसें जो हमारी शादी पर हैं? फिलासफी ऑफ मैरिज क्या है इस्लाम, ये वाकई इंसानी फिलासफी है या कोई दीनी अपनी मनगढ़ंत है? तो दूसरा यह है कि जब हम शादीशुदा लोगों को देखते हैं उनमें अक्सर कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं, अरे अगर ना करते तो ठीक ही था, वो की क्यों, अबे क्या फंस गए यार, बाप ने कहा, ऐसी सी बातें हो रही हैं। और सबसे लितस्कुनु इलैहा, सुकून ही नहीं है। तो अभी जब आप शादी कर रहे हैं तो हर कोई कहता है मैं अपना कैरियर पहले बनाऊंगा। कैरियर कब बनेगा, 50 साल बाद, 40 साल बाद? कैरियर ठीक है, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, आपका कैरियर भी बनना चाहिए। क्या शादी माने हैं आपके कैरियर बनने से? हाँ जी, अब कौन दूसरी की जिम्मेदारी उठाएगा, वो ये। अच्छा, जो आप शादी से हासिल करना चाहते हैं क्या वो आपको बाज़ार में अवेलेबल है? है, अगर है तो फोकस करें कैरियर पे, ये तो बाज़ार में भी मिलेगा ना। आपने फिलासफी ऑफ मैरिज क्या कहा? यानी एक स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट हो शादी करेगा, ये शादी उसकी तहसील इल्म में रुकावट बनेगी या इसको ओज तक ले जाएगी, इस पर बात ही नहीं होती। नतीजतन यह है कि आदमी अपने आप को बचता रहता है, अरे अब बीवी आएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर ये जिम्मेदारी, फिर वो बेहतर है इससे बचे, ठीक है।
1: दूसरी तरफ से वाजे भी है कि गुनाहों की तरफ अट्रैक्शन भी है, क्योंकि ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ गुनाहों की तरफ अट्रैक्शन है। अल्लाह ने एक हलाल रास्ता भी बताया है, हलाल रास्ते को आसान भी बनाया है। अब यहाँ पर जो है वो जवान के लिए चूज करना है हलाल तरीके।

0: का या हराम तरीका, क्योंकि ख्वाहिश तो है, ख्वाहिश को तो रिजेक्ट नहीं कर सकता।
1: नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, इस्लाम ने तो कभी इसको डिनाई नहीं किया ना, इसको एक रास्ता दिया है। लेकिन क्लियर ये हो जाए कि असलन शादी का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। अब जो दूसरा फोर्स जो उसे अपनी तरफ ले जाता, वो किस लिए, वही गुनाह एक चीज़ ही है जिसकी घर में क्यों नहीं मिलेगा वो उसे, उसने शादी की है, उसने ढूंढी है एक लड़की, लड़की ने एक लड़का ढूंढा है, तो ये बाजार में क्यों झांके, ये बाहर जाके क्यों झांके, घर में क्यों ना झांके। हम बहुत इस पे पढ़ते हैं हुकूक ज़न मर्द। मुझे एक बहुत सारे फिजूल टॉपिकों में से एक फिजूल टॉपिक ये लगता है ना, इसकी इसका ये अपनी अहमियत अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे ये पढ़ा जाता है वहाँ पे इसको पढ़ा ना जाए तो बेहतर है। हम शादियों में ये पढ़ते हैं, यानी पहले ही कहते हैं लड़की को कि शौहर तुम्हारा वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। शौहर कहते हैं बेटी ये जो लड़की है ये तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाएगी, तो एक तरीके का वो अजीब सा, बजाय इसके मोहब्बत सामने आ जाए, इश्क, वो इश्क की वो आग जो बढ़ के, हम इनको एक वो बेस कैंप पे लेके ना वो अपना हुकूक है ये, क्योंकि आजकल हुकूक की पामाली हो रही है इसीलिए हो रहा है। मेरे ख्याल से इसको ये सिखाएं कि जब बीवी जो है, जब ये बंदा बाहर चाहे स्टडी कर रहा हो चाहे पढ़ाई कर रहा हो, चाहे आपको कैसे मेकअप करके सजना है, इसने बहुत बाहर देखा है, वो सब भूल के ये आपको ही देखे। लड़का आमतौर पर, हमारे यहाँ एक कहावत है, कहावत क्या, एक रूटीन चल रही है कि शादी से पहले लड़का बड़ा बनता संवरता है, कॉलेज जाता है, और फिर जब शादी करते हैं फिर कहते हैं यार ये दाढ़ी क्यों नहीं बना, भाई छोड़ो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। ये उसकी इनर वो है होती है ना, अब क्या क्यों आप 10 देख रहे थे, अब एक को ही देखना है ना, उसमें भी उसको भी कहा जाए। हदीसें हैं हमारे पास, बन संवर के जब तुम अपनी बीवी के सामने आ जाओगे तो कैसा, वो चीज़ें जिससे इश्क की आग जो है ना वो उनमें भड़क उठे, बजाय इसके वो चीजें उनमें वह कि उनको लगे कि जी ये मेरा मुलाजिम
0: है, एक बर्डन नहीं लगे, बल्कि
1: बर्डन ना लगे,
0: बल्कि उसको शौक और इश्तियाक और वो हो।
1: मेरे पास सैकड़ों चॉइस थी, मैं मेरे पास दसियों लड़कियां थी जिन्हें मैं चूज कर सकता, मैंने एक को चूज किया, यानी ये 100 ये एक, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब मैं क्यों जाऊं बाहर देखूं, कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़ है, वो अपना वो ना वो। और दूसरा ये, अगर हम लेट मैरिज करते हैं इसके फवायद और नुकसानात क्या है, एक ही नहीं है बहुत सारे। अल्लाह ने क्यों कहा है कि पहले मैरिज करो, और हर एक जगह पे लअल्लकुम लअल्लकुम लअल्लकुम, नमाज पढ़ो लअल्लकुम तुफ्लिहून, वो अमल करो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये लअल्लकुम इसमें शक है, लेकिन फकत शादी पे अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माली हालत की वजह से तुम्हारी शादी नहीं है, यही रुकावट बनती है, तो छोड़ो मुझ पर, मैं करूंगा तुम्हें गनी, वहां पे अल्लाकुम नहीं है। तो कोई चीज है, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं पहले अकेला था, मुझ पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब मेरे पास बीवी आ गई मुझ पे, तो मैं ढूंढने लगा हूं रिज़्क को, ये एक शायद ये एक चीज भी हो। ये तो हो गई, लेकिन वो अट्रैक्शन वो जो खत्म होती है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने सीरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ा कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा को याद करते थे, जब भी रोते थे
0: शादी के
1: बहुत सालों बाद रोते थे।
0: खुद मौला अली अलैहि सलाम के लिए जंगे सिफीन में, इन्हें 25 साल के बाद मौला अली रो रहे थे हज़रत फातिमा के लिए।
1: अगर यही जिंदगी ना वो अपने तरीके, एक वो मुकद्दस जिंदगी ना जो फोके बशर है, नहीं हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे लगता है कि मियाँ बीवी में वो अट्रैक्शन नहीं है, और जिन्होंने शादी नहीं की जब वो इनका हाल देख रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं छोड़ो बस अब देखते हैं, क्योंकि एक एक जिंदगी का एक पड़ाव आता है जब किसी की ज़रूरत पड़ती है, वो इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना है, ज़रूरत है, अब मेरी नस्ल भी चले, मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ, वो भी अब बूढ़ी हो रही है, कोई साथी मिलना चाहिए, फिर चलो शादी के बंधन में बंधे। तो मेरे घर में, हमारे यहाँ अदालत शरिया चलती है, मैंने सबसे कम तलाक जो पड़ी वो 1 हफ्ते की है, एक थर्सडे को शादी हुई, दूसरे थर्सडे को तलाक हुआ, और पिछले हफ्ते में था घर पे तो कुछ केसेस आ गए, 7 महीने की उनकी एवरेज हमने निकाली, 7 महीने की शादी, क्यों, किस बात पे, क्या चीज़ है, क्या मिलाक मियार क्या है, खूबसूरती, माल, पैसा, मकाम, ये तो फानी है, आज नहीं कल तो फिर इसी, वही फिलॉसफी ऑफ मैरिज। क्यों अल्लाह ताला कहता है कि आपको असल आपका ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक आप
0: 70 times आपकी इबादतें बढ़ जाएंगी,
1: इसको उस तरीके से बयान करो कि एक सिस्टम लगे, तो उसे लगे कि नहीं

0: हर जगह ये है, शायद कश्मीर में भी है, कि ये कबीले वाले नहीं कर सकते, उस कबीले वालों से नहीं कर सकते, ये उस ख़ानदान के हैं, ये इस ख़ानदान के हैं। ये जो कास्ट सिस्टम हमने बनाया है, इस यानी इस्लाम तो आया था कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, तो ये कबीला सिस्टम के ये कबीले से वो कबीले वाले शादी नहीं कर सकते, ये क्या है? इसको कैसे
1: अर्ज़ किया ना, जब शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप बताएं कि मिलान क्या है, उन्होंने कहा हम कुफू मोमिन। मोमिन यानी दो ऐसी शख्सियतें जो नज़दीक हो एक दूसरे,
0: ईमान के लिहाज से,
1: ईमान के लिहाज, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो दुनिया
0: के, वर्ल्ड व्यू
1: जो हो, जो आपका नज़रिया हो वो नज़दीक हो, आप 100% एक नहीं हो सकते, और बोरिंग भी है, इख्तलाफात होने चाहिए, और लेकिन नज़दीक हो, ये मोमिन है। लेकिन हमने क्या कहा, नहीं जी ये मसलन एक ज़ात का, ये कहीं पे नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं है, ये हमारे बनाए हुए उसूल है। जो मैंने अर्ज़ किया कि अगर मिलाक और मेयार इखलाकी हो, इलाही हो, तो मुझे नहीं लगता शादियाँ नाकाम होंगी। लेकिन जहाँ पे ये हो कि नहीं जी ये मेरी पोजीशन का हो, ये मेरी हाँ इस्लाम में एज अ सिस्टम सब कुछ ये है, लेकिन अगर एक ज़ात की शादी दूसरी ज़ात के साथ हो, अगर दोनों मोमिन हैं, दोनों घर अच्छे हैं ईमान के लिहाज से, शराफत के लिहाज से, इखलाकियात के लिहाज से, तो मसला क्या है?
0: मसला सिर्फ
1: इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, वहां तो ना सैयद है ना गैर सैयद है। मसला ये जो अब हम उस चीज में फंस गए कि सोसाइटी क्या कहेगी,
0: जबकि हमारे यहाँ मराजों के यहाँ बिल्कुल वाजे तौर पर है कि मराजे अपनी बेटियों की शादी गैर सैयद
1: से, बिल्कुल
0: कई ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। खुद रहबर मुअज्जम के लिए, रहबर मुअज्जम की बेटियां जो हैं वो गैर सैयद में शादियां हुई हैं, तो और दीगर मराजे तकलीद भी हैं। तो हमारे यहाँ वही जो दीन हकीकी है, जहाँ पर ईमान देखा जाता है, तकवा, एक खूबसूरत सी मिसाल है कि रसूल अल्लाह ने एक शख्स थे, सियापूस थे, यानी अफ्रीका से थे, एक अरब के बहुत बड़े बादशाह, एक अरब के बहुत बड़े कबीले के सरदार को कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी इससे कर दो। ये गया वहाँ पर रिश्ता लेके, तो वो उन्होंने कहा कि मैं क्यों आया हूँ, कहा रिश्ता लेके आया, वो पैसे वाला, ये ग़ुलाम और वो इतना बड़ा मालिक, और ये तो वो जो शख्स था, मुझे नाम नहीं याद है साहबी का, वो शख्स थोड़े नाराज़ हो गए, तो उनकी बेटी इतनी बामारिफत थी कि बेटी ने बुलाया बाबा को, कहा कि पूछो खुद से आए हैं या नबी ने भेजा है। तो अंदर गए तो पता चला कि बेटी, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नबी ने भेजा है, तो बेटी ने कहा कि अगर नबी ने कहा है तो मैं राज़ी हूँ। अब ये शादी का मॉडल जो रसूल अल्लाह दे रहे हैं कि एक शख्स जो बड़ा कबीले का सरदार है, पैसे वाला है, सब कुछ है, और एक ग़ुलाम से शादी करके, तो ये मॉडल दे रहे हैं ना?
1: बिल्कुल।
0: अगर ये मॉडल हमारे मसलन इंडिया में, मसलन यहाँ पर हम लोग वेस्ट यूपी में या अलग जगह पर सैयद गैर सैयद, ये हम लोग, मुझे लगता है मुसलमान भी नहीं बने, शिया तो बहुत दूर की बात है, ये वही ब्राह्मणिज्म और वही वाला कल्चर जो है हमारे अंदर समा गया,
1: मॉडर्न जाहिलियत,
0: मॉडर्न जाहिलियत है, बिल्कुल वही समा गया। तो हमारा जवानों को, वालिदैन को पैगाम ये होगा कि एक हदीस है बहुत मारूफ है कि वो कुछ लोग रोज़े क़्यामत जब उनको नामे आमाल मिलेंगे तो वो लोग कहेंगे कि भाई ये नगुना तो मैंने किया ही नहीं।
1: बिल्कुल
0: जी, आप इसको तशरीह करें।
1: बहुत सारे ऐसे हैं ना, जब ये भी रिवायतों में है कि अगर माँ बाप सहलंगारी करें अपनी बच्चों की शादियों में, और ऐसे ही बहाने जो है आजकल के, अगर उनके बच्चों ने गुनाह किया तो उनके सर पे नहीं, उनके माँ बाप के सर पे, ये वही गुनाह है जो उन्होंने नहीं किए, क्योंकि हमने नहीं किए, नहीं तुम्हारे बच्चों ने किए, तुम्हारी वजह से किए, माहौल आज का देखना था, ये कुछ देखना था, तो आपने नहीं किया, फजूल की जो आपने
0: डीले कर ली शादियों में। तो ये हमारे वालिदैन को बिल्कुल क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि अगर आपका बच्चा, आज के दुनिया हम जानते हैं गुनाहों की दुनिया, गुनाह आसान है, सोशल मीडिया है, आज किसी को किसी से बात करना है बहुत ईजी है, गुनाह बहुत आसान है, अगर आपका बेटा बेटी गुनाहों में अगर है और आप बोल रहे हैं इट्स ओके
1: हाँ चलता है
0: चलता है ठीक है, आज की दुनिया ऐसी है, तो रोज़े क़यामत आप भी इसके
1: जिम्मेदार, आपका पड़ा जाए।
0: अच्छा एक और चीज़, यही मुझे बात बात में याद आई कि हमारे यहाँ ये भी है कि भाई लड़की अगर कोई गलत काम कर रही है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन लड़का कर रहा है तो चलो ठीक है
1: यार। वही ना, पर्दा लड़की को करना है, लड़के को नहीं करना ना, ये गलत बात है, असल है ही नहीं कहीं, लड़की और लड़का एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंसान गुनाह करे, चाहे वो लड़की हो, मर्द हो, या औरत हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, तो दोनों के लिए सज़ा मुअय्यन है, अल्लाह ताला का अज़ाब मुअय्यन, तख़फीफ़ किसी में नहीं है, कोई नौज़ुबिल्लाह ज़िना करे।

0: चाहे वो लड़की करे चाहे लड़का करे, नहीं जब लड़की ने किया ये बुरा है, लड़के ने किया नहीं चलता है, माहौल ही ऐसा है ना, ऐसा तो है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गुनाह गुनाह है चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे इजाफा करूँगा, एक वो जो मैंने पहले भी कहा था इफरात और तफरीत
1: एक्सट्रीमिज्म,
0: हाँ मुझे लगता है कि शादी बिल्कुल इस्लाम में बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो मुश्किल है वो ये हम कुफू ढूंढना, इस पे मेहनत करें, चूंकि मिलाक मियार का वो ना तत्वी कैसे करें,
1: सिमिलर हो दो,
0: हाँ
1: कंपैटिबल हो,
0: इसमें हम मेहनत नहीं करते, हम तलाक पे मेहनत करते, जब खुदा ना करे तलाक की बारी है ना, फिर उस पर बहस मुबाद क्यों तलाक हो गया, अरे हो गई तो अब छोड़ो, जान छोड़ो इनकी, ये चीज़ें जो आप अभी बहस कर रहे हो डिस्कस कर रहे हो ये आपको पहले डिस्कस करनी थी। अगर आपको दिख रहा है मोमिन, यानी आप देखो अपना जैसा, आपकी क्या है वैल्यू, आपकी क्या हैसियत है, आप जिसके साथ रिश्ता कर रहे हो आपकी फ़िक्र उसके साथ मिल रही, खुदा न खास्ता आप दीनदार हो और बेदीन हो, अब आपने मकान देखा, मकाम देखा, पैसा देखा और गर्विदा हो गए तो चले जी, कल वो उनका जो अपना जो उनका अंदर का वो बाहर निकलेगा, उस टाइम आप टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ये पहले ही देखना था। ये एक चीज़ गलत है, वो जो हम कह रहे हैं नहीं शादी आसान है, शादी आसान यानी शादी का इनेकाद आसान है, उसमें इतना आप अगर आप मसलन 35 किस्म का वाजवान ना करें, आप एक खाने में दें वो भी चलेगा, अगर आपकी हैसियत है 10 खाने की कर लें वो भी चलेगा।
1: अच्छा सवाल इसी से खाने की बात आई, मिसाल था लेकिन इसी कि किसी ने मुझसे परसों सवाल किया कि बोला मौलाना आप लोग बोलते हैं शादी में कम खर्चा करें, आसान करें, शादी आसान करें, लेकिन आप लोग, यानी मुझे कह रहा था आप लोग मौलाना लोग क्यों जाते हैं ऐसी शादियों में, क्यों उसको बॉयकॉट नहीं करते जहाँ पर ज़्यादा शादियों में खर्च होता है।
0: सवाल सही है, एक एक एक तनाजुर में सही है कि अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे
1: इसराफ हो रहा है
0: तो हमें रुकना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें हमें देखनी है, ये मेरा भी सवाल है, ये मेरा आपसे भी सवाल है, अपने आप से भी सवाल है और पूरे सारे हमारे सामीन नाज़रीन जो है उनसे भी, क्या एक करोड़पति बंदा मसलन जिसके पास पैसों की इतनी भरमार है कि शायद उसको ये भी पता नहीं मेरे अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, अब उसके बच्चे की शादी है और यहाँ से एक गरीब बंदा जिसको पता है कि बस शादी होगी तो फिर मुझे नहीं पता 10 साल कर्जा उतारना है, क्या इनकी शादी एक जैसी हो सकती है? ये इंसाफ है कि हम कहेंगे जी नहीं जी एक लोवेस्ट लेवल की शादी करें, माकूल है? मुझे लगता नहीं। हाँ अब अगर वो करोड़पति बंदा अपनी शादी पे 50 लाख खर्च करना चाहता है, 1 करोड़ खर्च करना चाहता है, लेकिन वो 10 लाख कम खर्च करे, उसको अप्रिशिएट आप करें, उसने 10 लाख कम किया, अगर आप उसको कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि आपने अपने बेटे या बेटी की शादी की, इतना आपने पैसा दिया, इतना आपने सोना दिया, ठीक है आपकी हैसियत है कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे एक यतीम बेटी भी एक की है, यतीम बच्ची है, उसको भी इसी में एक सहम थोड़ा सा दे दे, उसकी भी शादी हो, अगर आप कन्विंस, इसने 2 यतीम बच्चों की शादी खुद करवाई तो ये मुस्तहक दाद है या मुस्तहक मसलन इस्तेजाया कहेंगे, नहीं जी आपने इतनी बड़ी शादी की, और वो गरीब बंदा जिसको पता है कि मैं 2 खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता कभी भी नहीं, उसको क्यों उतना उछलना है कि फिर हमें उसकी जो मैं कहूँगा गैर माकूल हरकत को मशरूयत देने के लिए कहना कि देखो जी बेचारा ये गरीब मारा गया।
1: हाँ यहीं पर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पेश की जाती हैं वो ये है कि जैसे ही पैसे वाले लोग इस किस्म की शादियां करते हैं तो वो समाज में आहिस्ते आहिस्ते वो मॉडल, वो रोल मॉडल बन जाता है, और फिर वो दूसरे चाहते हैं कि उसको, तो ऐसे समाज में देखिए हम लोग हलाल और हराम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम इस शरीयत ने इजाज़त दिया है उनको कि भाई अगर वो करना चाहते हैं अपनी इस्तेआत के हिसाब से करें, लेकिन क्या इस्तेहबाब इसमें, क्या बेटर ये है कि आप अगर शादी ऐसी करें कि आपकी शादी इतनी हो कि जिसे कोई यह ना कहे कि बहुत ही गरीबों की तरह मसलन आपने शादी की, लेकिन आपकी शादी
0: आपने नॉर्मल की, आपने
1: नॉर्मल की कि मिडिल क्लास फैमिली जो है उसको अफोर्ड कर सकती है, तो आपने एक कार्य खैर किया, क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये
0: मैं ये मानने बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आपको उसको कन्विंस करना है
1: जी,
0: आपको उसके साथ ऐसे बात करनी है कि ये जो उसका कम खर्चा है ये उसको बहुत बढ़ा के पेश करना है कि आपने अगर 50 लाख कम किया, 5 लाख कम किया तो आपने पता नहीं क्या क्या किया वो जी। अगर हम बजाय इसके उसकी इस पॉजिटिवनेस को उजागर करके